धौन तुबिडावे तेहेन मीने का शल्लदा इब्दा तेना हेनेन अमसे हो हदी दाने आदे तून उम्ब तूना ना तु तेदने उन उधई ही दाब एहेनो दिवाती भी दाब गाल मिंदायनो उन उधई मीन का दुकान दन्ने एहे अरे आन शाद गीक सीन एहे अरे वेत अरीद गीक सीन एहे अरे आन वेन दल्ली एहे इतेन ते एदलीब ने तुआ हो ए आईवा उम्बरे तुमामल इफ्तिक दाम तेनी उम्बतियो हदी दाने आद हेनिन निसारी वे तुकन तूना दाई ने निसारी ओकना अवरे दाई बदाई इन्ने आद ओकना लाब दाई बदाई इन्ने आद ओकना वे तुनाती दा इन हेनिन उम्बतियो हदी ने नेत उतक अवल उन उतक दल्लीब तक एक एक रबे दल्लीबे का उम्बरु उन रबे दल्लीबे गुदान हो अर्री वो नान हो अर्री वे तिंदिये का उत्तोना वरुक दिले वे तिंदियो दाई न दल्लीबा शबूब न दल्लीबा तोना शिवप्तित दाई तिकतियक दाई दुलूब दल्लीबाया उधारे एनो को मिड्डा कर्रीफाया फायदे कर्रीफा एताने न तिंदियाया इदाई तिंदियाया अरे तोना तोकना दिलबा हा हा एया गीक्सा तिंदियो उगीगिस्त उकना मिशु अमाग्न ओधे के थे अमाग्न तिनीवे का लेत लेत बितकाय परोक के तिरिशे दोक अरवक के तिरिशे तुम अगी तु वत शबूब तु वकक ते काने हमसे दुकान ते बरियेक रबे ते बरियेक उन रबे उन जमन ए बरी दई कतब जमन दई कतब एकतीने ते है उन मर मर जमाने मर जमाने तिशबूब एदने तकारा एहें इन बते जमन शुबीत शबूब ना तिशबूबीत बरे तिनी वाया अरे जमन फाया मेने तु करा उन बतो यक्सेतित गी फिदने तिंगी दा गी गिस्तेनिया ले तिंदिये का तुमाद्दा बरियो तेफे तुम बतो अनहात ते कती तुमाद्दा तेन हदियो ओ दई कितरेशित बे तुनाती दा दाईन तिशिशबोबे तिनी वे तोनात तूना तूरा ना ना तु तिंदिये तो तो उरावे कतियक तुम अरे कतियक उन्दा खुदरावा दे कतीने बाबिंजे ले कतियक जीरजी ले कतियक असरे यो असरे कराय नसरे का एनो कब कितिये उन बरो असरे बगदा सेतीत उदाइब शिवफ्तीत शिशबोबी शुगुडीत देगी गिस्तिने धन तो बिडावे दाइब शाला दा तेना गले करो शाला मिकिरतीत ओम कर उदाइब दई तवा तेना हेने नल्ला नुआ दिने तोन उन ओधे दुकाने हुआ आन इन इन द रबे गीक से हुआ इन बरे ओ हरीद नहीं तोन तो दाइत ओधे ही ना तून ते मगे ओ फिदना दा साना बिम बतियो इन बलिब दियो क्नमियादी मसे हदीद नहीं हेने ओ तोन उन तेन हल्ला नहदीदा ने नाती शात ते कतियक तोश तोकन तो शात अमसे गीक सातें दिए का बरुक तोया हर्री दो दाई था अति हर्री दाया मल्ला तोया असे दासे अति ओधे रुबो किलो व नुस किलो व वेर व तिनियो देन ओदोर ओ तो वज व मेजान तो दाम तिनी नाती दाए दाउ जिने ती तिनी वाया तू शारे तोकन शिविप्ती तो बैतर से तोपती शंबी वदाई ते कतिय बित्ताय अमाक ते कतियक ओधे लेत के तिरशित अरे तोश उन ओदोर उगीक साते अदने तीफ दई कुमेनेक वे न दई कुमतेक बेन ओदोर नदीफ मीनान नस मीनान दासित उम्बतो तोकना गत्तीत नि आया ना ना तुतिन देख उम्बतो तीफ दई दायतित दई कुमेतित मल्ला तदिनीवे का उधई यमकिन उम्बतो कितरेशित यमकिन दायत कित्ते बेत उम्बतो मल्ला बरोक कितरेशेदोक दोक दाई न कित्ते हराम होई ते तोशी का बेतो नाती दाय उम्बतो गुनो खोई दिन तू न तू राव ना ना तो तिंदिये रबे बुएर गीक सा तिंदियो हैडी बिकतीने क्वारे बिकतीने इदाय की दन्ने आ एमक हुई दी एमक की एमक हुई दी थी इदाय की दी थी मतलब हर रो इकतीये एरा इकतीये दाई न ओधई तिनी उधयु नहीं इन इन तो निसरी वे तोक न ते करना दाई न निसरी वो करना ओ तो न थो हदी नने ओ तक रबे गीक सी नहीं हुआ ओरा वो इनी नुआ वो इनी नन अरे नाथ शंबीब इदाई इंदिये तोना हुआ तोन तु इनीने तोकन मिड्डा इनीने तोना हुआ शिविप्चित तोन तु दाईत इनीने तोन उम्बतु अर्रीव अरे उन तुमेजान बाबाडिन अनांदे दुकाने बेफिन तुमेजान दाय वजिन औजिन आना उम्बतु बरे क्रंशी दोकना हराम हुई बातो शिक्का बाना कुबित तु नाती दा उम्बतु मुहिमीत तू राव तित्तेन तिदाई तिगीक्से गीगीगिस्तेनित इम्बते शगवा ढरवा दे हैं सुगुन्ना तो धाई द दे लेबना अरे आन तो एक ना तो इन रिस रिस्ती अरवा दे हैं
তোর রেসানাত শেষ বোবনাথ দায় থা আতি দই দিলব না উন্দা আরে মতায় মে ও মতাবিখে ও এহেন আন্দা ওরাবি গিকসেন মতায় মসালন মতায় লেব এহেন উম্বারা তোমারে উধাই তে দলিব নো বেন ওদোর দায় তোমারে দই দিলব না তোমারে তোকনা তোনে তোনে তুনেতি দাস্তেনে দায় বনে এ দায় মিয়াও হিনাত দায় থা আতি নাত ফেশাত উম্বাতো হিনা আরে ও মিন ওকনা তুন্দিওয়া তোকনা মত আমি এফে তুসিন হিসা তুনাসাস উন তারাবেজা তে কাতিয়েক তেনা তুমারে দিয়ে এ কাতিনেক ইম্বারে দায়ব সিনহস্তিত দায় থা আতি তিনি ওয়ায়া আরে ও তক ও রাও মতাবিখে বেহেন এন দা এ কাতিনেক উন ওদোর ইহাডে তে গিদনে ও ইহাডে তে এনে বেন ওদোর ইয়ায়েক তুসিন হিসনা ও গারোক তুসিন হিসনা ও ধাই লহিত আমাগ না হিতিত বারে আমাক বদ্দি মিয়াদি বেতুনাতি দা উম্বতু আরি ওক না শাল্লা দাই থা আতি দাতে না দাই না তিমির না দাই না তে না কসান হন উন আল্লাহ কসেন দাই না সারি ও নাকো দাই না দায়া না সাকা না দিয়ায়ন এ নে স্থির ওক না

धरण तो बिडावी तेह नि मीने क तिसनी ने ना एता नि मीने क एताने ना हेनन एम बलिब दोर का तुदई ने आदे तुकन दाई न सरी ओकना तुशबुब ने सरी ओकना दाई था तिब दाती ने तरेनी अवले व अवरे व अलाव शल्ला दाई दाते ना शल्ल तुतूनी हो तोनी होकन संगी शल्ल वहमूर होकन संगी ताना ताना तामक तेह नि मीने क सगे कातेक न शल्ल एकतीन हेनन तु निसरी वे तुक न तिकते न दाई न निसरी ओकना शबूब न निसरी ओकना बरेक न रंशित तुक न तोन अदगिरना हदित क एम बली भोई नियाद नियत हेनिन सोना बनून हदीन आप किंग के ओ सु दाई निसरी ओकना दाए उगनुक न हित इतित तित्ते न एम बते उगनुक न हित इतित सेना करतित उसना किर कीक ओ हदी दीन इव कीक सेना करित तोन शिशुबोबे आई तोन सूर स्तोबे ऊनहन अमाक कीके बेत्तो नाती दा दाईन ने सरी ओकना दाईन शाल्ला दीमा दाएब दातेना शाल्ला दीमा दाईन तिमिरना

धौन तुबिडावे तेहेन मीने का शल्लदाय दाते ना हेनेन अमसे हो हदी दाने आदे तून उम्ब तूना ना तु तेदने उन उधई ही दाब हेनो दिवाती भी दाब गाल मिन दायनो उन उधई मीन का दुकान दन्ने हे अरे आन शाद गिक्सीन हे अरे वेत अरीद गिक्सीन हे अरे आन वे न दल्लीब हे इत्ते न ते इदलीब ने तुआ हो ए युवा उम्बरे तुम आमल इफ्तिक दामते नीत उम्बतियो हदी दाने यद हेनिन निसरी वे तुक न तूना दाई न निसरी वोकना अवरे दाई बदाई इन्ने यद ओकना लाब दाई बदाई इन्ने यद ओकना वेत तुना ती दा इन हेनिन उम्बतियो हदी दने यद उतक अवल उन उतक दल्लीब तक एक एक रबे दल्लीबे का उम्बरु उन रबे दल्लीबे गुदा न हो अर्री वोक नान हो अर्री वेब तिंदिये का उत्तोना बरुक दिले वे तिंदियो दाई न दल्लीबा शबूब न दल्लीबा तोना शिवप्तित दाई तिकतियक दाई दुलूब दल्लीबाया उधारे एनो को मिड्डा कर्रीफाया फायदे कर्रीफा एताने न तिंदियाया इदाई तिंदियाया अरे तोना तोकना दिलवा हा हा एया गीक्सा तिंदियो उगीगिस्त उकना मिशु अमाग्न ओधे के थे अमाग्न तिनीवे का लेत लेत बितकाय परोक के तिरिशे दोक अरवे के तिरिशे तुम अगी तू वत शबूब तू वकते काने हमसे दुकान ते बरियेक रबे ते बरियेक उन रबे उन जमान ए बरी दई कतब जमान दई कतब एकातीने ते है उन मर जमाने तिशबोबे एदनेत कारा एहें इन बते जमान शुबीत शबूब ना तिशबोबीत बरे तिनी वाया अरे जमान फाया मेने तु करा उन बतो यक्सेतित फिदने तिंगी दा गीगिस्तेनिया ले तिंदिये का तुमाद्दा बरियो तेफे तुम बतो अनहात ते काती तुमाद्दा तेन हदियो ओ दही कित रिशित बेत तुनाती दा दाई न तिशिश बोबे तिनी वे तोनात तू न तू राव ना ना तु तिंदिये तो उराबे कतियक तुम अरे कतियक उन्दा खुदरावाद कतीने बाबिंजेल कतियक जीरजीर कतियक अफरे यो अफरे कराय नसर का एनो कब कितिय उम्बरो अफरे बगदा सेतीत उदाइब शिवप्तीत शिश बोबी शुगुडीत देगी गिस्तिने धन तो बिडावे दाएब शाल दाते ना गले करो शाल मिकृतीत ओम कर उदाइब दई तवाते ना हेने हल्ला नुआ दिने तोन उन ओधे दुकाने हुआ आन इन इन द रबे गीक से हुआ इंबरियो हरीद नहीं तोन तो दाई ओधे ही ना तू न ते मगे हो फिदना दासा ना बिम बतियो इन बलिब दियो कनमियादी मसे हदीद नहीं हेने उत्तोन उन तेन हल्लान हदीदा ने नाते शात ते कतियक तोश तोकन तो शात अमसे गीक सात इंदिये का बरुक तोया हर्री दो दाई था आती हर्री दाया मल्ला तोया असे दासे तित ओधे रुबो किलो व नुस किलो व वेर व तिनियो बेन ओदोर ओ तुवज उमेजान तो दाम तिनी नाती दाए दाउ जिने तित तिनी वाया तू शारे तोकन शिविप्तित वैतर से तोपतित शंबी वदाई तिकतिय बित्ताय अमाक तिकतिय ओधे लेत के तिरशित अरे तोश उन ओदोर उगीक साथ एरने तीफ दई कुमेनेक वे न दई कुमतेक बेन ओदोर नदीफ मीनान नस मीनान दासित उम्बतो तोकना गित्तीत नी आया ना ना तु तिंदियेक उम्बतो तीफ दई दायतित दई कुमेतित मल्ला तदिनीवे का ऊधई यमकिन उम्बतो कितरेशित यमकिन दायब कित्ते बेत उम्बतो मल्ला बरोक कितरेशिदोक दोक दाई न कित्ते हराम होई तोशी का बेत तुनाती दाय उम्बतो गुनो खोई दिन तू न तू राव नाना तु तिंदियेक रबे बुएर गीक सा तिंदियो हैडी बिकतीनेक वरे बिकतीनेक इदाइब की दन्या एमक हुई दीत एमक की एमक हुई दीत इदाइब की दीत मतलब हर रु इकतीक एर इकतीक दाई न ओधई तिनी उधई उन्हें इन्हें इन तुने सरी वे तोकन ते करना दाई न ने सरी ओकना ओ तो न थो हदी नने ओ तक रबे गीक सी नहीं हुआ ओ राव हो इनी नुआ हो इनी नन अरे नाथ शंबीब इदाई बिंदिये तोना हुआ तोना तो इनीने तोकन मिड्डा इनीने तोना हुआ शिविप्तित तोना तो दाई इनीने तोना उम्बतु अर्रीव अरे उन तुमेजान बाबा डिन आनंद दुकाने बेफे तुमेजान दाय वजन औजे नाना उम्बतु बरे क्रंशी दोकना हराम हुई बातो शिक्का बाना कुबे तो नाती दा उम्बतु मुहिमीत तू राव तित्तेन तिदाई तिगिगसे गिगिगिस्तेनित इम्बते शगवा ढरुआ दे हैं सुगुन्ना तो धाई दा दे लेबना अरे आन तो एक ना तो इन रिस्ती अरुआ दे हैं
তোর রেসানাত শেষ বোবনাথ দায় থাকি দই দিলবনা উন্দা আরে মতায় মে ও মতাবে খেও এহেন আন্দা উরাবে গিকসেন মতায় মসালন মতায়লেব এহেন আমারা তোমারে উধাই তেদালিবনো বেন ওদর দায় তোমারে দই দিলবনা তোমারে তোকনা তোনে তোনে তুনে তিদা দাসেনে দায়ব নে এ দায় মিয়াও হিনা দায় থাকি না ফেসাত উম্বা তো হিনা আরে ওমিন ওকনা তুন্দেওয়া তোকনা মত আমি এ ফির তুসিন হিসা তুনাসাস উন তারাবেজা তে কাতিক তেনা তুমারে আইদান নিয়ে এ কাতিনে ইম্বারে দায়ব সিনহস্তিত দায় থাকি তিনি ওয়ায়া আরে ও তক ওরাও মতাবিখে বেহেন এন দা এ কাতিনে উন ওদোর ইহাডে তে গিদনে ও ইহাডে তে এনে বেন ওদোর ইয়ায়ক তিসনিসনা ওগারোক তিসনিসনা ও ধাই লহিত আমাগ না হিতিত বারে আমাক বদ্দি মিয়াদি বেতনা তিদা উম্বতু আরি ওক না শাল্লা দাই থা তিব দাতে না দাই না তিমির না দাই না তে না কসান হন উন আল্লাহ কসেন দাই না সারি ও নাকো দাই না দায়া না সাকা না দিয়ায়ন এনে নিস্তির ওক না